ब्यूटी इंडस्ट्री थी दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही रहा जो प्रोवाइड करते हैं सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ये सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले भी जाने जाते हैं हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिए इसे लिए तो हाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नु सर्व कर रहे हैं विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है स्वीट्स दे स्नैक्स दी बड़ी कलेक्शन भी है जो की तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुण छू मंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको था ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगू शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वरगा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry 2023@gmail.com ते

ब्यूटी इंडस्ट्री से दुनिया में अपना करियर बनाने बारे सोच रहे हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तो हाडे ऐसे करियर के ड्रीम्स नु दिखाने के सही रहा।

0: आइए आइए आपका स्वागत है हर संसार में और ये आत्मा परमात्मा और बाहर की दुनिया के साथ
1: आपको अपनी आंखें चेक करवानी है आई एग्जाम आई ग्लासेस कॉन्टेक्ट लेंसेज सन ग्लासेस सेफ्टी ग्लासेस तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल चिंकोजी एंड विलियम्स पार्क में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज जी हाँ उनकी स्पेशल देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल डॉट सी ए पे जाइए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 पर कॉल कीजिए 9054562733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस
2: लो जी कमाल फिर अपना टेस्ट भी गल करन लगे हैं दिल कर रहे हैं ताही का सिर करन लगे हैं जरा सुन के सोने

0: डांडिया या गरबा यानी नवरात्रि भारत वर्ष का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा माता अपने 9 रूप लेकर घर में आगमन करती हैं। तो ऐसे में दुर्गा माता के सुंदर स्टैचूज घर लाना ना भूलें। आइए इंडिया सजावट एंड पूजा हट और सिर्फ दुर्गा माता स्टैचूज ही नहीं बल्कि नवरात्रि पूजा थाली कलश कोकोनट मैंगो लीव्स केथरी पॉट्स और फैंसी डांडिया स्टिक्स भी अवेलेबल है। GTS बिगेस्ट एंड ओरिजिनल डिवाइन शॉप इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 905-458-6808।
1: आनंदपुर का मन बन से सुखाली रहा पतित उदाहरण सतगुरु मेरा मह किसका परभाषा बख्श ले सब सच्चे साहेब।

आइए पाई मन तन शीतल होई। सूरत मल्ला पंजवा संत हो हर हर नाम ते आई। सुख सागर प्रभु विसरो नाही, मन चिंदियाड़ा फल पाई रहा। सतगुरु पूरा ताप आया अपनी कृपा धारी,

सुख इन महे उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहाओ। हर हर नाम दियो दास, तिन सगला रोग विदारो, अपनी कृपा धारी।

सबनी थाई रव्या पाद जुगाद जाता वन प्रताप गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई मुठे।

किया जा हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण विचारिया रहा वन त्रिन त्रिपवन हरिया होए सगले जिए साधारिया मन इच्छे नानक फल पाए पूरन इच्छ पुजारिया।

ईश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल भू।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साई राम, या अली मदद। और आपका लिए जो वीकेंड है, अभी सर्दी की शुरुआत हो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड, तो अब जब आप बाहर निकलें तो थोड़े बहुत अपने आप को अच्छी तरह से ड्रेसअप करके निकलें, तो इसी तरह ही हमें ठंड का अभ्यास होता है। लेकिन ये है कि वीकेंड में धूप खिली रहने वाली है, तो मौसम लॉन्ग वीकेंड, अगला जो वीकेंड है लॉन्ग वीकेंड है, तो उसमें थैंक्सगिविंग का लॉन्ग वीकेंड आने वाला है। तो आपको अब इस हफ्ते आपके लिए आपने 2 अक्टूबर का दिन है, तो बड़े महान दिन है आज, महात्मा गांधी जी का उनको याद किया जाता है और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है, राष्ट्रपिता हैं। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से आपका बढ़िया सा मनोरंजन करते हैं। तो अब अगर आपने अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया लेके आना है, या फिर आपने टीवी बढ़िया लेना है, अब महोत्सव सूजन शुरू हो गया है, दिवाली आने वाली है, लोग आने हैं, तो आपने अगर अपने घर में बढ़िया फ्रिज लेके आना है, बढ़िया फर्नीचर लेके आना है, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक पर जाइए और खूब वहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया स्पेशल्स मिलेंगी। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो और फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-700-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो आज लाल बहादुर शास्त्री जी को भी याद किया जाता है, तो उन्होंने बहुत अपने देश के लिए, देश के नेता थे, और उनका जो उनको याद किया जाता है, उनकी ग्रेटनेस, उनकी सिंपल साधारण, इतना बड़ा होने के बावजूद भी वो उन्होंने अपना जिंदगी को बड़ा सिंपल सा रखा हुआ था। तो बड़ा उन पे ऐसे नेता देश में हुए हैं, तो हमें जरूर उनका गर्व होता है, जब भी उनका दिन आता है तो हमें एकदम बहुत खुशी महसूस होती है। तो आइए आपको एक बढ़िया सा गीत भी सुनाते हैं। तो पहले अगर आप मूव होना चाहते हैं, तो एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में आपकी मदद करते हैं मूव कराने के लिए, तो इसलिए फिर आपने अगर मूव होना है तो आप एच के मूवर्स को कॉल कीजिए। जी हाँ, एच के मूवर्स आपके लिए कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, और साथ ही आपको आपके लिए उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, तो बहुत बढ़िया आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो अगर आपने मूव होना है तो आप उनको कॉल करिए, 416-524-4416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी किस्म के भी, अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपने कोलिशन का काम करवाना है, तो आपके लिए बहुत ही खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो गौर रोड पे खुल चुके हैं। तो मास्टर कोलिजन डिपो पर mastercollisiondepot.com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारियां ले सकते हैं।

0: एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले फॉर जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 4% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हम 3 लोकेशन पर सर्व करते ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्गिन रोड ईटोबीको। मेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1150
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो
2: लेट्स अपडेट्स के लिए

जी एक बार फिर आपका स्वागत है घर संसार में। तो इसी तरह हम उनका जो दिन है वो मनाएंगे। आप हमारे साथ बहुत जुड़े रहिएगा। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत भी सुनाएंगे। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने किसी किस्म की भी आपके घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेके आना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए तो इंटर मॉडल एंड्रेपर रोड में मौजूदा दूसरी लोकेशन में गोल्फ में दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखिए, फिर अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कीजिए 416-524। उनका जो आपके लिए लोकेशन हैं दोनों वहाँ पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स 905-700-0045 पर आप कॉल कर सकते हैं। दिवाली से पहले ही आप बुक कर लीजिए और जो भी आपको सामान मंगवाना है तो वो आप पहले से ही ऑर्डर बुक कर दीजिए, चाहे नया टीवी हो या फिर बैक यार्ड में आपने बढ़िया फर्नीचर लेके रखना है तो आप कॉल कीजिएगा 905-799-0045। तो ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है कि वहाँ पे अब मास्टर कोलिजन डिपो खोल चुके हैं। आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, आपकी कार वैन ट्रक को एकदम नए जैसा बना देते हैं तो आप गोर रोड पे जाइएगा और मास्टर कोलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ आप ले सकते हो। अगर आप थॉरल्ड में नियाग्रा फॉल के आसपास के इलाके में रहते हैं तो इलेक्शन आपके लिए 26 अक्टूबर को है। तो साद महमूद आगे आए हैं, वो कम्युनिटी की काफ़ी हर बहुत सालों से नियाग्रा इलाके में मदद करते आ रहे हैं। तो आप वोट डालनी है तो आपको ये सोचना पड़ता है कि हमारे लिए कम्युनिटी में इस तरह के जो काम है लोग करते हैं भलाई के तो वो कौन करता है, मदद के लिए कौन है। तो आप उनका नाम ज़रूर याद रखिएगा। तो अपना हक है, आपका वोट जरूर डालिएगा।

हाँ, तो ये भूले बिसरे गीत है, एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद रखती हूँ आपको जरूर पसंद आ रहे हो, खास करके सुबह सुबह में जब आप इस तरह के गीत सुनते हो तो आपके लिए आपका जो सोल होती है वो बड़ी खुश हो जाती है, तो आपका दिन की शुरुआत बहुत अच्छी होती है। तो चलो इसी विचार के साथ प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप पूजा का सामान लेना है तो आप जानते हैं ये सजावट एंड पूजा हट। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग करनी है तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं। तो आप और जानकारी के लिए उनको

कॉल कीजिएगा और ट्रक अपना बुक कर लीजिएगा। और बहुत सारी इनकी टीम्स हैं, आपके सामान को बड़े हिफाजत से वो पहुंचाते हैं। तो आप 416-524-8004 पर आप कॉल कर सकते हैं, 416-524-6704 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स, बहुत बढ़िया सर्विस, बहुत क्वालिटी सर्विस है उनकी, तो आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो अब अगर आपने खाना ऑर्डर करना है, न्यू इंडिया स्वीट्स का रेस्टोरेंट आपके लिए क्रेडिट व्यू ब्रिटानिया पे मौजूद है, तो वहाँ पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो लाइव कुकिंग करवानी है, 905-814-1800-3905 8141730 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। और अपनी दिवाली के लिए अपनी खास प्रोग्राम करना है तो आप उनको बुक कर लीजिए, 905-814-1800-3, न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो आज ही पहुंचो बीबीटी रोकलिफ आटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हैमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके 1 लाख डॉलर तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% ते शुरू। हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई वधिया डील लब के देणगे। ते जे तुसी कोई भी किसे तरह दी भी जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर दी लोड है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो, AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानूं मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सिद्धी बचत, तो फिर देर किस गल दी, आज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉकक्लिफ आटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो अब अगर अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लेके आना चाहते हो, अभी आपके लिए फेस्टिव सीजन है, तो आप आजकल श्राद्ध चल रहे हैं, पितृपक्ष चल रहा है, तो फिर नवरात्रे आएंगे, तो इसी तरह से जो महाउत्सव सीजन है वो आपके लिए चलता रहेगा। अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा भूला बिसरा गीत है, तो वो भी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। आप बस जुड़े रहिएगा हमारे प्रोग्राम से, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग।

देखी चमेली आपकी, तो बड़ा प्यारा गीत है और मूवी भी देखने को मिले तो बहुत ही खूबसूरत मूवी में बड़ा बढ़िया तरीके से फिल्माया गया है ये गीत। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अब अगर आप अपने लिए किसी किस्म की भी आपको फ्रिज सो वाशर ड्रायर लेना है तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइएगा। महाउत्सव सीजन अभी शुरू हो चुका है तो आज आपके लिए बड़ा ही महान दिन है, 2 अक्टूबर का दिन है तो सभी जगह बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है ये दिन। आपने बहुत सारा वीकेंड है अभी तो वीकेंड में सभी लोग महात्मा गांधी जी के बारे में जरूर कुछ ना कुछ मनाएंगे, किसी ना किसी ढंग से अपने अपने ढंग से सभी लोग इकट्ठे होते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी जो स्पीचेस हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो उनकी जिंदगी के बारे में बहुत बड़ी एग्जांपल है, नेशन फादर हैं। हिमाचल वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हिमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हिमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर लई फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेलेबल हन। जे तुसी हिमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तो साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तो वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानू नवें टायर दी लोड है तां ओह भी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुणो AM530 लिसनर्स लई खास ऑफर, जद तुसी बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हिमिल्टन आओ सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 ते मीरा शर्मा तों तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल प्राइस ते परचेस ते $500 ऑफ। जी हां, 500 दी सीधी बचत, तो फिर देर किस गल दी। अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हिमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हिमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स। जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब आपके लिए बहुत बढ़िया, आपको अगर आपने पूजा का सामान लेना है, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं 8 अक्टूबर से, तो आप जरूर अगर आपको पूजा का कोई भी सामान चाहिए तो इंडिया सजावट पूजा हट, तो लीजिए सुनिए एक और बहुत ही प्यारा सा गीत।

हाँ तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो अगर आपके लिए अकाउंटिंग का अपना HST फाइल करना है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिएगा 416-302-8135। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, ये भी लता जी और मुकेश जी का गाया।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर में। तो हमारी कोशिश है कि आपको महात्मा गांधी जी की स्पीच जो है उनकी थोड़ी सी आवाज हम किस्मत वाले हैं कि उनकी आवाज हमें ये जो थैंक्स टू सोशल मीडिया और ये जो चैनल्स बने हुए हैं वहाँ से हमको उनकी आवाज सुनने का मौका मिल रहा है। तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, लेकिन ये जो 2 अक्टूबर वाला दिन है ये बड़ा खास है, हिस्ट्री बनी है, ऐतिहासिक दिन है। दो लोगों के, हमारे भारत के जो खास लोग थे जिन्होंने बड़ा योगदान दिया।
1: An indefinable, mysterious power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike power than I Even in ordinary affairs, we know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet, they know that there is a power that certainly rules. In my tour last year in Mysore, I met many poor villagers

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट

गई बोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभे माया तारी नाम पर्यो भगत गोविंद का।

जैसा बालक पाए सुपाई, लाख अपराध कमावे। कर उपदेश छिड़के बहु पाती, बहुड़ पिता गल लावे।

हरे अंतर जामी सब विद जाने, ता किस पह आख सुनाइए। कहने कथन ना बीज गोविंद, हर पावे पैजर खाइए।

आपे सुने बेनते पूरा सतगुर मेल मिलाव सब चूक मन की चिंते हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख बसंते होए दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर आपे सुने बेनते पूरा सतगुर मेल मिलावे।

0: जन नानक सुख वसंते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवा गई बहोड़ बंदी छोड़ निरंकार दुखदारी कर्म ना जाना धर्म ना जाना लोभे माया तारी नाम परयो भगत गोविंद का ए राखो पैज तुम्हारी।
1: स्वागत जी प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो दे नाल तुसी ए सफर दे विच जुड़े हुए हो ते बहुत ही प्यारी जो सवेर है ते इस सवेर दा आगाज़ जो चंगा होया ते आउण वाला समा जो है ये भी बिल्कुल चंगा ही होवे परमात्मा अगे इहो अरदास करदे आ ते सवेरे सवेरे पहला तां शुकराना बिल्कुल बनदा है नवा दिन जो चढ़िया नवा दिन सानू देखण दा मौका मिलिया ते जिथे जो तंदुरुस्ती जो है जेकर परमात्मा ने परिवार दे विच बनाई है तो मेरे ख्याल इस तो वड्डा शुकराना तो फिर करन लई कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सो प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो ते जी अज ठंडा ठार जो मौसम सवेर वेले बिल्कुल है हुण अक्टूबर शुरू हो गया चलो सवेर वेले तो ठंड होनी बनती भी है 7 डिग्री इस वेले तापमान ने दिन भर अज जो बीते दिनां नालों थोड़ा ठंडा जरूर रहेगा हालांकि चलो निखरी हुई धुप होवेगी पर 16 डिग्री अज दे तापमान होने की उम्मीद है ते फिर देर राती चलो डबल डिजिट ही रहेंगे टेंपरेचर पर 11 डिग्री तक जाएंगे। सो जो पिछले हफ्ते भी लगता सी कि हुण ठंड आ जानी है अक्टूबर की शुरुआत है पर फिर भी चंगे मौसम रहे ते अज चलो थोड़ी जी ठंडक रहेगी पर उस तो बाद उम्मीद है कि हाले अगला हफ्ता भी 21 डिग्री टेंपरेचर जो ने ये सानू जरूर दिखाएगा। सो जो अक्टूबर का महीना है जो ये फॉल असी कहने कि शुरुआत हुण फॉल दी हो गई है जो पतझड़ आ गया तो उस दे विच ये जो निघी ठंडक है ये दिने जरूर थानू महसूस होंगी रहनी है क्योंकि 21 डिग्री तापमान जो ने इस पूरे हफ्ते भी बिल्कुल बने रहेंगे जी। सो जी दिन चढ़ चुका है पर सूरज चढ़न दे विच हले समा है 7:18 अज दा जो सनराइज होना सो समा चलो हौली हौली इस दे विच अगे हुंदा जांदा ते 6:55 शामी जो अज दा जो सनसैट होना है सो ये तय होया परमात्मा वालों ते ये पूरा दिन जो है सानू मिलिया जिथे छुट्टी बच्चियां लई चलो एक राहत भरी हुंदी है कि चलो जो 5 दिन स्कूल दे लाए ने हुण 2 दिन आराम भी बच्चे करनगे पर चलो आराम बच्चियां दा हुंदा है मापियां नूं कित्थे आराम है ते जी थोड़ा दिन जो है वह सफल रहे ते आओ सरवण करदे आ एक शब्द प्रोग्राम पंजाबी लहरा रेडियो ते तुसी बने होए हो जी ते बिल्कुल बने रहना।

माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेल है सगल जगत, चंगियाईया बुरियाईया, वाचे तर महदूर, कर्मी आपू अपनी, के नेड़े के दूर, जिनी नाम तिहाया, गए

0: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट यहाँ पहुँचो 10970 ब्रैमली रोड वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री मैंगो लस्सी सॉल्ट लस्सी मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे 299 दे विच अमृतसरी कुलचा विद चना 799 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा 399 सब्जी मार्केट ओपन 24/7
1: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ

0: Cowboys.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: ओह यार बिजनेस का माड़ा हाल होया पे कितनी तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी नींबू मिर्चा टंगो पर कृपा तो हो ही नहीं
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता
5: रेडियो आवाज
6: रेडियो आवाज रोजाना सवेरे 9 to 10 बजे तक एवरी सैटरडे 10 to 1 बजे तक प्राइम टाइम ते वधेरे जानकारी ले तुसी कॉल कर सकते हो 416-518-3200
7: यार आजकल इकोनॉमी बहुत टफ चल रही है ट्रकिंग इंडस्ट्री स्लो है बिल्डर क्लोजिंग्स रुक रहे ने कई बिजनेसेस लॉस विच जा रहे ने जिथे सेविंग्स तक खत्म होने लग जाती हैं पर कनाडा विच फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए लीगल ऑप्शंस अवेलेबल ने थ्रू द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस तुहानू डेट नू प्रॉपरली असेस करन मैनेज करन ते सिचुएशन अकॉर्डिंग रिलीफ ऑप्शन समझाने विच हेल्प करदे ने इस प्रोसेस नाल तुसी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन नू कंट्रोल विच ले आ सकदे हो ते अगला सही स्टेप प्लान कर सकदे हो ज्यादा इन्फॉर्मेशन लई अज ही कॉल करो 416-518-3200 416-518-3200

चले हम फैक्टर डालते रेडियो आवाज में हमदीप सिंह बैरीपाल एक बार फिर तो खुशी और गम तो उपर उठ के जड़ा है कि आनंद पिया मेरी माई सतगुर में पाया सतगुर की कृपा के नाल अज का खूबसूरत दिन कि जिथे सुरमई सवेर जिंदगी दे बराग वर्गी अलादीन दे चिराग वर्गी जिवें संघड़े बोड़ा की छां जिवें मूँह डुबी मां ठंड वर्गी खंड वर्गी दोस्ती दे सच वर्गी खुशी न परे गच वर्गी मेरी सत श्री अकाल एक बार फिर तो प्रवान करो।

0: सरदार स्वयं ब्रिजी ने, ब्रिजी कैसे हैं आप?
1: ऑलवेज
0: पूरे जोश के साथ,
1: ग्रेट
0: ग्रेट। और ब्रिजी जड़ा हैगा एक आयुर्वेदिक जड़ा हैगा तरीके नाल थोड़ी नींद नू वधाउणा, ते जिथे कहिंदा बारिशा के नींद ना देखे बिस्तरा, भुख ना देखे मांस, मौत ना देखे उम्र नू, इश्क ना देखे जात। बाबा बारिशा साडा बुजुर्ग जड़ा होया जिन्हें पंजाबी बोली नू बड़ा कुछ दिता हैगा, गायब हो गए वारिस होने बुले होने जो बाबा बुले शाह है जी, बुले शाह का एको मणका मौला ही मौला करता, 24,000 नमाज इश्क दी तू पंज कीदियां पढ़ता, बुले शाह का एको मणका मौला ही मौला करता, एक एक मणके च नमाजा पढ़ता मैं, तू पंज पढ़ के काजी कादियां जिहड़ियां गल्लां करता। बाबा बुले शाह कहिंदे बाबा रब नूं पाउणा, हस के कहिंदे आ मोढे ते हथ रख के कहिंदे रब दा की पाउणा, इधरों चक्किया इधर लाउणा, तू ही तां रब आ कमलिया, अपने आप नूं टटोल। सो अंदर दी यात्रा, अंदर दी यात्रा हुंदी है आयुर्वेदिक तरीके दे नाल, ब्रिजी करदे ने ब्रिजी जी। आप जब हमें अंदर लेके जाते हैं, मैंने चार विजिट आपके साथ की, पांच। फर्स्ट विजिट में मेरे बॉडी दे उत्ते गठां बणियां होईयां सी, ब्लड सर्कुलेशन वॉज नॉट एक्यूरेट। वो क्या था जो आप बोलते थे? नॉट्स बनी थी,
1: नॉट्स है जी, नॉट्स
0: क्यों बनती है?
1: बॉडी है ना जी, बॉडी में नॉट्स कभी कभी आए,
0: उनका बहा सही नहीं है, ठीक है। नंबर टू, ये पोटली ना मालिश करता, जिन्नी सोजिशा नू जिहड़ी गर्माहट है वो खत्म कर दिया। नंबर तीन, जिन्हें नींद नहीं आती, ये थर्ड आई होंगी अपने नक् के उपर अखा के विचकार, उहदे ते शिरो दरा नाल तेल पाउंदा हैगा, वह तेल पा के अपनी तीसरी अख नू सुख चैन दिंदा हैगा। सो बॉडी का कोई भी कंसर्न, रक्त पान तो लैके कोई भी प्रॉब्लम, इको सोल्यूशन, इको ना इको थां ब्रिजी दी धर्मशाला
1: जी,
0: ब्रिजी दी धर्मशाला जिहड़ी है मार्टिन गुरुद्वारे दे कोल हरिदा केरला आयुर्वेदा दे नाते
1: जी।
0: आज आपके पास अपॉइंटमेंट्स हैं?
1: अवेलेबल है जी,
0: जब लेडीज एंड जेंट्स लिमिटेड,
1: नहीं नहीं
0: बंदा डर जाता है, नहीं फिर लोग भागते जाते हैं कि लिमिटेड है ले लें, है ना। ब्रिजी को अपॉइंटमेंट अवेलेबल है
1: जी,
0: लेडी और कोई भी मेल और फीमेल दोनों कॉल करो, दोनों वास्ते अलग अलग सर्विस देने वाले लोग ने, फीमेल जी है औरत है औरतों सर्विस देंगे, वो जे कि एक्सपर्ट लोग ने, तेल बड़े खास ने इन्हों, इन्हों को पंचकर्मा तो लैके शिरोधारा तो लैके
1: सब केरल से जी,
0: अभियंगम है,
1: मैं भी मालिश है जी, मालिश के लिए।
0: आपको एक लेडी ने कॉल किया था, उसने द्वारा हमें कॉल नहीं किया, मैंने आपको बोला था उसको बोला हमें कॉल करे,
1: नहीं किया नहीं जी, मैं फोन किया उसको।
0: अच्छा ठीक है, सो ब्रिजी का नंबर क्या है?
1: 6476491369
0: पंजाबी में,
1: 6476193
0: फिर द्वारा
1: 6476193।
0: सो ब्रिजी पंजाबी बन गया, जिवें पंकज पंजाबी बन गया ऐसे ब्रिजी पंजाबी भी बन गया, पंजाबियों दी मालिश कर करके पंजाबियों वर्गा बन गया
1: जी।
0: कैसे लगे पंजाबी लोग आपको?
1: बहुत बहुत बहुत बढ़िया,
0: बढ़िया ना
1: या।
0: बस इन्हें आप तो ठीक हो जाने, जी चिगली निंदिया जिसे को काम किया उन्होंने गाला कढ़ी जानियाँ, जिसे ना किसी ने पार्टनरशिप कर लिया वो नर्क हो गया, जिसे ना किसी ने रिश्ता पै गया वो माड़े हो गए, जिन्हें किसी ने मदद करती वो मगर पै गए, मतलब ये चीज़ें इन्हें ठीक हो जाना
1: जी।
0: सच ही कहना रब वर्गे लोग ने इन्नी दिलदारी, गुरु नानक पातशाह ने पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत कह वाले गुरु पातशाह जिन्होंने धरती की उत्पत्ति की गल की है। तेरा फोन बज रहा ब्रिजी, उठा लेना बाद में, पहले भी नहीं
1: जी।
0: जे थोड़ा फोन नहीं मिलता टैक्सट मैसेज करनी है, लिमिटेड ये को अपॉइंटमेंट ने, $55 लेंदा, पिछले 3 साल तो इन्हें रेट बताया जिम्मे मैं नहीं बताया, तो जो आया सी मैंने कहा जिन्ने पैसे दे होने उन्हें दे दी, जिन्हें नहीं देंदे ना दे, तो बहुत काम किया इस आदमी ने, सेवा भी लोगों की बहुत हुई। 6476193 कोई बीमार है, रियल बीमार है, मतलब चुस्त बंदा ना कोई कॉल करे, चलाक बंदा ना कॉल करे, जो मैं कहना धौन च कीला जिन्हें फसया मैंने कॉल ना करे, हंकार जिसे कर दिन चाहना वो तो मेरे गले ना करे क्योंकि मेरी उन्होंने एनर्जी मैच नहीं होनी। 6476193 से कॉल करो, तुम एक मशीन च बिठा, मशीन का क्या नाम है?
1: स्वेदना,
0: स्वेदना, स्वेदना चूस जाती है पसीने ना, तो
1: आयुर्वेदिक डिटॉक्स
0: मशीन है, मैंने दो मेरे वाल देखने लग गए स्वेदना कोई लेडी नहीं है स्वेदना मशीन है जी 647
2: क्लियर कर दो सर।
0: हाँ मैं ताही कहना कान जो परन हो गए सर, स्वेदना पसीना कर देंगे बॉडी चवेदना। 6476191369 अंडर 100 रुपये टॉप दे होके निकलो अंदरों, किरा बड़ो अंदर 1.5 घंटा इन्हें ला के आओ
2: फुल वर्गा कर देंगे।
0: मैं कहना जब तू जाके देखी
2: ठीक
0: तेरी बॉडी दी सारियां डिफिशियंसीज दस दू, कि सोजिश है, कितने प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, जे गर्दन के कोल अकड़ाहट है, इतने स्ट्रैस किन्ना हैगा, सब रिलीज कर दूंगा, जोर लाऊंगा पूरा है अपने हाथों के नाल। 6476193
1: थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
0: गाना सुनो फिर मैं काली जान के नारा कर 6476191369647461913 ਬ੍ਰਿਜੀ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸਪੀਡੈਕਸ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸਪਾਂਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਧਾ। ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਸ਼ਵਾਨੂ ਬਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਹੋਲਡ ਪਏ ਹੈ। ਸ਼ਵਾਨੂ ਬਈਆ ਹੋਲਡ ਰੱਖੀ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਮੇ ਆਪਸੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸੁਲਤਾਨ ਜੀ ਵੀ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ।

0: जी आओ 170 गिल्डन रोड यूनिट नंबर 17, 170 गिल्डन रोड यूनिट नंबर 17, टेलीफोन नंबर 6473021322 जेलो टायर सेंटर।
1: ड्राइवरी सूट कर दिया जट्टा नूं
2: Simply Indian brings you all simply delicious deals. Buy one, get one free every day. Sure 10 to sham 7 baje tak on dine-in and takeouts. Maza lavo Sunday no paratha plate. Monday, manpasand kulcha plate. Tuesday, chana bhatura. Wednesday, lajawab veg thali. Thursday, yummy haka thali. Friday, maza lavo saag makki di roti da. A yummy deals is Simply Indian di sariyan hi locations te. Dining, takeout and catering also available. Call at 905-794-8111. Simply delicious. Matlab, Simply Indian.
0: सस्ती ग्रोसरी और हरियां ताजियां सब्जियां लई शहर दे विच इको इक नाम सत शिखामा तो इंडियन फ्रूट लैंड ते नाल ही है नदी तंदूरी ग्रिल बाहरले पासे जिथो तुहानू बणिया बणिया हर फूड मिलदा है नाल दी नाल रा मीट भी और मैरिनेट कीता मीट भी तुसीं लिया सकदे हो अपने नेड़ली लोकेशन ते आओ 45 डस्ट ड्राइव फैंडर बे ब्रैम्पटन 9985 मकवीन ड्राइव ब्रैम्पटन 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन 33 फार्ली ड्राइव गोल्फ which are 600 Haskell Road, Cambridge. Namikoni branch, 25 Central Wood Parkway, Kennedy to Central Wood Parkway, then ready. Aao, hariya taajiyan sabziyan, aur ji sasti grocery waste poncho, Indian fruit land te.
3: Hello AM 532 tusi sun rahe ho Desh Pardesh Prime Time Radio
0: Today vich live galbat kar layi hune call karo 905 564 64 44 905
3: 564

0: खाना चाहते हो 299 ईच, आलू कुलचा खाना चाहते हो 499 ईच, चिकन बिरयानी 699, वेजी नूडल्स भी 699, चना भटूरा 399, चिकन करी विद नान 999 दे विच लेके आओ, वेजिटेरियन मीडियम पिज्जा दो टॉपिंग्स वाला 699 ईच। ये तुहानू गल्फ कैम्ब्रिज एंड सैंडलवुड पार्क वाली लोकेशन के उपर मिलेगा। इन्हां दी मल्टीपल लोकेशन ने, मैं तुहानू लोकेशन दस दिया जे इन केस तुहानू नहीं पता। वैसे तुसी गूगल ते भी सर्च कर सकते हो, जिहड़ी भी लोकेशन तुहाडे घर दे नज़दीक है उत्थे तुसी जाओ। 1465 मेफील्ड रोड ब्रैम्पटन दे विच पहली लोकेशन, 9985 मैकवीन ड्राइव यूनिट नंबर 49 ब्रैम्पटन दे विच मैकवीन दे उपर ने गए। तीसरी लोकेशन है 15 फेंडर वे बोवेड एंड चंक्यूजी के कोल, 45 डस्क ड्राइव डस्क एंड चंक्यूजी के उपर है, 33 फॉरले ड्राइव गल्फ दे विच लोकेशन हैगी है, 600 हैस्पलर रोड कैम्ब्रिज दे विच है इन्हां दी नवीं लोकेशन, 25 सैंडलवुड पार्क वे वैसट सैंडलवुड एंड हरनटारी दे इंटरसैक्शन के उपर लोकेटड है। तो इन्हों का एक सैरेमनी एक्सप्रैस भी हैगा, 10 लाइट बीम टैरिस यूनिट नंबर 17 एंड 18 ब्रैम्पटन के मिसिसागा रोड एंड स्टील्स की इंटरसैक्शन के उपर लोकेटड है, अपलायंस जंक्शन के बिल्कुल नज़दीक ने गे। 10 लाइट बीम टैरिस के उपर सैरेमनी एक्सप्रैस, ये भी इंडियन फ्रूट लैंड वाले का ही हिस्सा आ, इतने तुहाडे लई टेकआउट फूड अवेलेबल है। तुसी इन्हां दी किसी भी लोकेशन के उपर जाके नाले तो सस्तियां ग्रोसरीज करे आओ ते नाले बहुत ही लाजवाब फूड आइटम्स ले आओ। इंडियन फ्रूट लैंड एवरीडे तुहाडे लई 10-11 बजे तक ओपन रहिंदे ने, जाके तुसी इस ऑटम सेल का पूरा फायदा ले सकते हो। 1122 जी, सत श्री अकाल। सत
1: श्री अकाल आंटी जी।
0: हां जी किशोर कुमार की आवाज़ करो, सुनते रहो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: चक्कर लगाओ।
1: ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो बहुत निघा स्वागत है तुहाडे अपने प्रोग्राम दे विच। उम्मीद है कि तुसी प्रोग्राम पूरा एंजॉय कर रहे हो। कुछ समय दा टाइम मेरे कोल हो रहा है तुहाडे नाल, ते उम्मीद है कि तुसी सारे प्रोग्राम दे नाल नाल अपने गाने नूं एंजॉय कर रहे होवोंगे। कोशिश मेरी यही हुंदी है कि मैं सारे गाने सुना के जावां, बट अज मेरे ख्याल च सारे लगणे नहीं। बट एनीवेज नैक्सट फरमाइशी गाना तुसी सोनी पाबला जी दी आवाज़ च एंजॉय करो, ते सुंदरो देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो।

0: Everyone knows you don't let a kid swim unsupervised. You don't touch a baking tray straight out of the oven.
1: Ouch!
0: You're careful when using a sharp knife.
1: Ah!
0: And you don't drive without a seatbelt.
2: Buckle up!
0: But not everyone knows that prescription meds left out in the open cause accidental overdoses in young people every year. Substance reminds you to store your medications safely or bring them back to the pharmacy if they're expired. A message from Substance. Learn about it. Talk about it.
3: 32, 55, 80.
4: 98
3: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो
4: काउंटिंग नहीं ए ते 32 55 80 ते 98 इंच दे टीवी ने
5: जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने इन्ना कोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते
4: 32 तो 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने
6: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी कॉल 905 450 2828 905 450 2828

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दियां सारियां आइटमां डॉलर 475 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट डॉलर 5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबी को। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।
1: रिट्स फर्नीचर का यह मैसेज जरा

0: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000 416-910-6000 और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग.
1: Use multi-factor authentication.
0: Once again, welcome to the program. Swagat hai tuhanu sab da program de vich. Galbaat karan layi number again 416-910-6000. Is number te galbaat kiti ja sakdi hai. Chalo ek khoobsurat jehe geet di taraf tuhanu leke chalde haan. Tuhadi farmaish, tuhadi nazar, tusi geet sunna chaha hai. Aur enjoy karde hain is khoobsurat se geet nu. Chandarmaa di चंद की जेकर असी गल करिए बहुत खूबसूरत है चंद्रमा. और जदों स्पेशली पूर्णमाशी होंदी है तो फुल मून जदों होंदा है तो उदों उस दियां वाइब्स बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग होंदियां ने. एंड इट रियली अफेक्ट्स आवर लाइफ क्योंकि चंद्रमा नूं एस्ट्रोलॉजिकली मन दे नाल जोड़िया जाता है. मन दे बारे असी सुनिया ही है कि मन जीते जग जीत. मतलब जे तुसी अपने मन नू जीत लिया तो समझो तुसी दुनिया जीत सकते हो. पर प्रॉब्लम यही है कि मन नू जीतना सब तो मुश्किल काम है. लेकिन जेकर तुसी कोशिश करते हो, तुसी अपने मन नू स्ट्रोंग रखना चाहते हो तो पानी ज़्यादा पिया करो, पानी दे नज़दीक रहा करो, चांदी ज़्यादा पहनो, तुसी अपने मन नू स्ट्रोंग कर सकते हो. इट्स वेरी ईजी बट इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज़ हार्ड. कई बार असी जिंदगी रूटीन दे विच चलते रहने हैं बट वी डोंट थिंक कि जिंदगी बहुत सारिया परेशानियां आंदी हैं, बहुत सारिया मुश्किल आंदी हैं कि कोई रस्ता नज़र नहीं आता. तो यह मतलब है किसी की कही हुई गल, छोटी जी गल सानू पिंच कर जाती है. यदा मतलब है कि साढ़े इमोशंस इमबैलेंस हैं. मैं लास्ट वीक दस्या सी कि अपने इमोशंस नूं बैलेंस करन लई या अपने इमोशंस नूं स्पिरिट नूं हाई करन लई, अपने मन नूं मजबूत करन लई तुसी एवरी मंडे जेकर चांदी का एक सिक्का अपने पिल्लो के नीचे रख के सोते हो तो उहदे नाल जिहड़ी चांदी की एनर्जी है वह तुहाडे मन नाल कनैक्ट होकर तुहाडे माइंड नूं स्ट्रोंग कर सकती है. इस टाइम जो फुल मून हुंदा है तो उस टाइम तुसी पानी ज़्यादा पियो. अजकल तो बहुत ट्रेंडी हो गया है मून वाटर बनाना. चंद्रमा की रोशनी विच तुसी पानी रख दो और सारी रात वह पानी चार्ज हुंदा रहिंदा है. दैन यू कैन ड्रिंक दैट वाटर. उहदे नाल भी तुहाडा मन जिहड़ा स्ट्रोंग हुंदा है. फिर पुराने समाने विच तुहानूं याद होएगा कि साडे नानियां दादियां दरखत के उपर चंद्रमा पूर्णमाशी वाले दिन, फुल मून वाले दिन खीर बना के टंग देंदे सी ताकि चंद्रमा की पूरी रोशनी उस खीर के अंदर आ जाए और उस तो बाद वो सारी फैमिली नूं खीर दित्ती जांदी सी. सो ये भी एक रिचुअल कह सकते हो, ट्रेंड कह सकते हो या फिर अपने मन नूं स्ट्रोंग करन दा एक तरीका कर सकते हो. छोटे छोटे चीज़ां ने बट विदाउट एनी कॉस्ट असी घर दे विच ही इन्हां चीज़ां नूं यूज़ विच लिया के अपनी जिंदगी नूं बेहतर बना सकते हैं, अपने मन नूं स्ट्रोंग बना सकते हैं. होर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तुहानूं मिल सकती है रेडियो गोल्ड दे किसी भी प्लेटफॉर्म दे तुसी जाओगे, यू विल गैट ऑल द इन्फॉर्मेशन अपनी जिंदगी नूं ते अपने मन नूं किदां बेहतर बनाया जा सकता है. एक खूबसूरत जिहा गीत तुहाडी नज़र. इंजॉय दिस ब्यूटीफुल सोंग. कहिंदे हैं कि चांद चांद भी क्या हंसी सितम ठाता है, चांद भी क्या हंसी सितम ठाता है, बचपन में मामा और जवानी में सनम नजर आता है. एंजॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और प्रोग्राम ऐसा ही सुनते रहो. 5:30 से 5 to 6 बजे तक रेडियो गोल्ड. आफ्टर द शो नंबर इज 416-910-6000. जस्ट बी रेडी. आप थोड़ी जी एस्ट्रोलॉजिकली गल भी करांगे कि जेकर थोड़े हाथ में दिल है अलग अलग जगह पे तो वो की रीजनस हो सकते हैं एंड हाउ वी कैन थिंक बैटर ऑन दैट. और मनीबंदी भी गल करांगे जिहड़ियां लाइन्स थोड़े हाथ में. वी टॉक अबाउट दैट लेकिन आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग. एंजॉय द सॉन्ग.

0: प्रोग्राम आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड शाइन विद सोनम. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग. विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक. अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत. कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600. वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी इयर्स. विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर, नॉट डीलर्स. यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770.
1: हाय अंजू, कैसी हो? हाउ इज योर सन डूइंग?
2: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर टीवी फोन पर लगा रहता है. आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल.
1: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल.
3: शी इज राइट, चाहे बच्चे हो या बड़े, वेयर स्मार्ट ग्लासेस एवरी डे. ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज. विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव ब्रैम्पटन, 905 457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.

0: अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5,000 jobs completed, 16 installers team, cover across Ontario, more than 9% in home staffs last many years. Windows and Door manufacturer, not dealers. Yash Windows and Doors 416-732-3600 or 416-674-7770. ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, ਰਿਨਾਊਂਡ ਨੇਮ ਇਨ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ, ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਲਾਈਂਡਸ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕੀਤਾ ਕੁਛ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ there is no mediator, manufacturer hai aur direct manufacturer ton tonu very good price and good quality de yash windows and doors de upar jaake tusi information le sakde ho. Yash ji, swagat hai tuhanu.
1: thank you very much. aapko sare shrotao ko namaskar karta hu
0: ji. welcome. aur thodi si information de please dharam ji, yash windows and doors ke bare mein.
1: yash windows and door 2012 se window and door ki manufacturing karti hai. toronto based hamari factory hai और अक्रॉस ऑन्टारियो में 34 इंस्टॉलर्स के साथ हम विंडो डोर जो बनाते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं. विंटर ज्यादा दूर नहीं है. अगर आपको लगता है कि आपके घर में विंडो डोर बदलने की जरूरत है तो अभी फास्टेस्ट 4.5 वीक में हम जॉब कंप्लीट कर देते हैं अक्रॉस ऑन्टारियो. सो प्लीज हमें कॉन्टेक्ट कीजिए 416-732-3600.
0: यश विंडोज एंड डोर्स का नंबर है. इस नंबर ते जाके तुसी इनफॉरमेशन कॉल करके एक्चुअली इनफॉरमेशन लो, क्योंकि मैन्युफैक्चरर हैं और डायरेक्ट तुसी इन्हां दे नाल डील करनी है, विचकार कोई मीडिएटर नहीं है, तो वेरी गुड प्राइस ऊपर तो गुड क्वालिटी का सामान मिल जाएगा. ओके यश जी, आप लोकल जीटीए में ही सर्विसेज देते हैं या आउट ऑफ जीटीए भी अगर किसी ने करवाना हो तो?
1: सर्विस देते हैं. अभी कैलगरी शुरू हो चुकी है, वैंकूवर में शिपमेंट जा रही है, तो मोस्टली नेशन वाइड अब खुल रहा है. लेकिन अक्रॉस ऑन्टारियो, पूरा ऑन्टारियो हमने कवर कर चुके हैं. हमारे 2 शोरूम्स हैं, 2 फैक्ट्रीज हैं, तो पूरे ऑन्टारियो में हम सर्व करते हैं.
0: और इस टोरंटो में जीटीए में अपनी लोकेशंस बता दें यश जी.
1: जी, हमारी 2 लोकेशंस है, 185 कार्लिंग व्यू ड्राइव यूनिट 6 इटोबिको, वहाँ हमारी फैक्ट्री है. अगर शोरूम में जाना है तो 8917 द गोर रोड, सब्जी मंडी के प्लाजा में, सब्जी मंडी के एग्जैक्ट सामने ही यश विंडोज का शोरूम है.
0: बिल्कुल जी, क्या बात है, जबरदस्त. 416-732-3600 ब्रैम्पटन वासियों, तुहाडे लई इट्स अ गुड न्यूज और इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि तुहानू टोरंटो ऑल द वे जाण दी जरूरत नहीं है. ब्रैम्पटन ईस्ट दे विच तुहानू इह सर्विसिज, एक्चुअली ब्रैम्पटन ब्रैम्पटन ईस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ. ਗੌਰ ਰੋਡ, ਗੌਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਯੂਨਿਟ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਕੰਟੈਕਟ 416-732-3600 ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਟੂ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰਸ, 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਇਨ ਜੀਟੀਏ. ਐਂਡ ਕੰਮ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਆਲ ਓਵਰ ਕੈਨੇਡਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਰੋਮ ਯਸ਼ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਐਂਡ ਡੋਰ, 732-3600. ਯਸ਼ ਜੀ, ਧਰਮ ਜੀ, ਸੌਰੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ.
1: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਜੀ. ਔਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂੰ ਹੀ ਚਲਤਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ. ਚਲੋ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ. ਔਰ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਲਿਟਲ ਅਬਾਊਟ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ. ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਨੈਵਰ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਅ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨ ਥਿੰਗ, ਇਟਸ ਅ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਾਏ ਨੋਇੰਗ ਅਵਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ, ਅਵਰ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਓਕੇ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਸਟੇ ਟਿਊਨਡ ਰੇਡੀਓ ਕੋਲਡ.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड. फॉर एनी प्रमोशंस टू ग्रो योर बिजनेस, स्पॉन्सरशिप और एनी अदर इन्फॉर्मेशन, कॉल 416-910-6000, 416-910-6000, और यू कैन ईमेल radiogold01@gmail.com. कीप लिसनिंग एंड कीप स्माइलिंग.

0: ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कड़ाही, शिनवारी चिकन एंड गोट कड़ाही, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800 416-526-6800
1: रिट्स फर्नीचर का मैसेज जरा

अगर आप अपने घर के विंडोज और डोर्स को चेंज करवाने के बारे में सोच रहे हैं तो सोचे मत। कॉल करें यश विंडोज एंड डोर्स एट 416-732-3600। वर्किंग सिंस 2013, मोर देन 5000 जॉब्स कंप्लीटेड, 16 इंस्टॉलर्स टीम कवर अक्रॉस ओंटारियो, मोर देन 9% इन होम स्टार्स लास्ट मेनी ईयर्स। विंडोज एंड डोर मैन्युफैक्चरर, नॉट डीलर्स। यश विंडोज एंड डोर्स 416-732-3600 और 416-674-7770।

0: ओपन माइक कैफे एंड कुजीन 1310 डंडा स्ट्रीट ईस्ट मिसिसागा। खालिस और लज्जत से भरपूर खाने वतन की याद दिला दें, तीखे और तेज मसाले हर फीकेपन को मिटा दें। लाहौरी गोट एंड चिकन कढ़ाई, शिनवारी चिकन एंड गोट कढ़ाई, सीख कबाब, रिश्मी कबाब, पाए निहारी, हलीम बिरयानी, शवरमा, पिज्जा और बहुत कुछ सिर्फ ओपन माइक कैफे एंड कुजीन पर। 416-526-6800
1: Once again, welcome to the program. Chalo ji, open mic cafe. Thonu leke chalde hain Nasir ji ek var fir to sade naal hai. Nasir ji, swagat hai.
2: Bahut shukriya Sonam ji, open mic cafe wale tonu pata hai bhi oh kehnde ne bhi maza nahi aayega te paise na dena. Aise badhiya gal ki ho sakdi hai, tusi pahunchna kithe Dixie and Dandas de bilkul corner te. Aur agar tusi waqai chahnde ho

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दे नाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नो सारे परिवार को बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नू खुशामदीद एंड स्वागतम।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई
0: हाँ
1: तू एवं कर जेड़े प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंगे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हाँ मैनेज करना केड़ी केड़ी चीज होनी चाहिए आ बच्चा केड़ी केड़ी चीज जी फायदा पहुंचाऊगी समर कैंप के दौरान यह सारिया चीजा ऑर्गेनाइज कर दे बन जा
0: मतलब ये कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या चीज चाहिए है फार्मस चाहिए बैग चाहिए दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की मां की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की मां नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किदा दी मां हो गई जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दई ते ओ मेरे गा ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले एक मिनट हेलो एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया चंगा लगा नी
1: हेलो
0: मुक दी गल जे अगले मेरे को काम कराउणगे कल नूं भाई साहब मेरी कोई चीज अगले दा जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देण फेर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दीआं गल्लां
2: देवतातले नूं कॉल कर रेडियो ते अपने कारोबार दी ऐड चला भाई स्पेशल पैकेज ने उहनां कोल फोन कर 416-677-0609 416-677-0609